मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, जाते जाते मोटा दे रहे घम दे गया। यस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फिल्मी गजल। एंड आई थॉट लेट्स ब्रिंग मेमोरीज बैक। एंड यू नो जाकिरा यू वाइड अवेक थे, यू नो बिफोर आई कैन इवन प्ले द सॉन्ग शी इज ऑलरेडी सेड एक परदेसी मेरा दिल ले गया। थैंक यू सो मच जाकिरा फॉर ट्यूनिंग इन। प्रोफेसर दौलत रामदास आवर मैन दैट ऑफ कोर्स diligently, regularly is one of the first callers through. Thank you so much, Professor Saab. ये आपकी मोहब्बत है कि आपने हमारे प्रोग्राम को समाप्त फरमाते हैं. And of course, my little niece there in Cape Town, Cass. Thank you so much, Cass, for your bright words, my child. May you go on listening. It's so good to have young ones listening to the program as well. And then, of course, this Pran Mahabir of Tugela also tuned in.
1: मैं हूँ अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं गुलदस्ता. जी हाँ, ये भी महमूद के साथ.

0: Yes, of course, Vijay Dhanraj of Stanger. It was a young Anup Jalota sahab jo apni rang bhari andaaz mein is ghazal ko pesh kar rahe the. And of course, as you are aware, he was in the country a week ago. And yes, those of you that went out to listen to him, I'm sure you were thrilled listening to this very, very great entertainer. Shukriya Bhai Shahid Mia, also for your kind words out there. And then we have Zakia Abdul Abu Bakar Ghani, who also enjoying the music. And saath mein Pakiza and Professor Daulat Ramdas. They said so many memories came flooding back. Uddek ek pardesi mera dil le gaya. And then also Tarana from Johannesburg has the same to say as well. Thank you so much, Tarana. Then Asha as well. She's really enjoying the music. All our regular listeners. Ar hamare janab Anil Ram Sarup sahab Benoni ke rehne wale hai. Ye bhi badi mohabbat wale hai mia. Shukriya, ye aapki mohabbat hai that you regularly call through and in sending such lovely messages, my brother. I hope I can read them all out, but as you know, time is of paramount importance and we'd want to get along with this show. So keep listening and I really, really appreciate all you people's support out there.
1: The countdown to Africa's greatest horse racing and social event is on Saturday, 4 July. The Hollywood Bets Durban July takes over Hollywood Bets Greyville Racecourse in a dazzling celebration of country allure, where style and entertainment take center stage. Your general access ticket also unlocks an incredible live music experience featuring Grammy Award-winning artists Zakes Bantwini and the ensemble, and some of Mzansi's biggest stars like Mikasa, Will Lindley, Tamara Day, Vicky Sampson, Supreme 3, Will Reyes, and Angel Masibugo. Country charm meets rustic glamour in a celebration like no other. Be part of one of South Africa's most iconic events. Get your tickets now at Ticket Pro.
2: Bold, elegant, and truly distinct has arrived at Jayashree's Rivaz. Introducing the Riva Collection, a limited signature edition just unpacked. So don't just blend in, dare to be distinct. Jayashree's Rivaz, in stores and online now.
3: EB Memo on Lotus FM.
0: जी हाँ, आप इबी महमूद के साथ हैं एंड इट इज गुलदस्ता अब उर्दू लैंग्वेज शो. It's, I know I'm a little late with the Suno or Siko, but let's go through with it. I'm going to do a few couplets again this evening. Tere chehre pe jo muskaan hai, tere chehre pe jo muskaan hai, wahi meri zindagi ki jaan hai. Tere chehre pe jo muskaan hai, wahi meri zindagi ki jaan hai. Meaning, the smile on your face is the very life and soul of my existence. Tere chehre pe jo muskaan hai, वही मेरी जिंदगी की जान है. पहली बार तुझे देखा तो ऐसा लगा, पहली बार तुझे देखा तो लगा जैसे हर दुआ का असर मिल गया. पहली बार तुझे देखा तो लगा जैसे हर दुआ का असर मिल गया. द मोमेंट आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम इट फेल्ट लाइक ऑल माई प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड. मेरे ख्यालों में आते हो तुम कुछ इस तरह, मेरे ख्यालों में आते हो तुम कुछ इस तरह जैसे बंद आंखों में सुकून मिलता है. यू एंटर माई थॉट सो ब्यूटिफुली जस्ट लाइक फाइंडिंग पीस व्हेन वन क्लोजेस हिज और हर आईज. मेरे ख्यालों में आते हो तुम कुछ इस तरह जैसे बंद आंखों में सुकून मिलता हो. यू एंटर माई थॉट सो ब्यूटिफुली जस्ट लाइक फाइंडिंग पीस व्हेन क्लोजिंग माइन और योर आईज. सिर्फ लफ्जों से नहीं, सिर्फ लफ्जों से नहीं तुझे अपनी रूह से चाहा मैंने. सिर्फ लफ्जों से नहीं तुझे अपनी रूह से चाहा मैंने, क्योंकि तू सिर्फ एक शख्स नहीं मेरी जिंदगी है. आई हैव लव्ड यू नॉट जस्ट विद वर्ड्स बट विद माई सोल, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट ए पर्सन, यू आर माई लाइफ. सिर्फ लफ्जों से नहीं तुझे अपनी रूह से चाहा मैंने, क्योंकि तू सिर्फ एक शख्स नहीं मेरी जिंदगी है. आई हैव लव्ड यू नॉट जस्ट विद वर्ड्स बट विद माई सोल, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट अ पर्सन, यू आर माई लाइफ. तो आइए आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. एंड आई एम गोना बी प्लेइंग यू अनदर गजल बाय अली खान. एंड आई नो ऑल दोज दैट लव अताउल्लाह खान, ट्रेजेडी किंग, विल रियली लव दिस गाय सिंगिंग. शाहिद मियां खास आप लोग के लिए है.

गजलों की दुनिया में एक नई आवाज़ है, और आवाज़ है अली खान साहब की. एंड आई एम श्योर ही इज़ ब्रिंगिंग मेमोरीज बैक ऑफ यू नो आवर ट्रेजेडी किंग अताउल्लाह खान साहब. बड़ी बेहतरीन अंदाज में ये भी गजल सुनाते हैं. आई एम श्योर इज गोइंग टू बिकम अ बिग नेम इन द वर्ल्ड ऑफ गजल. थैंक यू सो मच बहन रुखैया बीबी मियाँ ऑफ जोहान्सबर्ग फॉर गिविंग अस योर ब्यूटिफुल मैसेजेस. निर्मला देवी वन ऑफ आवर रेगुलर्स एक्स डर्बन नाइट नाउ सेटल्ड इन एल्बर्टन शी इज ऑल्सो सेंडिंग सम ब्यूटिफुल मैसेज. शी इज ऑल्सो रिमेम्बरिंग ज़ाकिया अहमद सिद्दीकी एंड ऑफकोर्स इट वॉज हेवनली बर्थडे यस्टरडे. मैगी एंड Shailene Chetty, thank you guys so much from Savannah Park. And then our regulars out there again, Vasanti Indrani Carnegie, also of course tune in to the Qawwali Hour as well. So aiya program ko aage badhate hain, and let's listen to another man that really revitalized the art of ghazal singing, and it's a late Jagjit Singh Sahab.

0: मैं नशे में हूं और ये थे मरहूम जगजीत सिंह साहब, द लेट जगजीत सिंह. ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन, मोस्ट डेफिनेटली हिज वॉइस विल लिव ऑन फॉर ईयर्स टू कम इन द वर्ल्ड ऑफ गजल. शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच. टीना नाइक ऑफ शैल क्रॉस, सबिता सुखदेव इज वेल, एंड देन वी हैव द सतार ब्रदर्स इज वेल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल्सो ट्यूनिंग इन. फारूक साहेब, फारूकी साहब, शुक्रिया भाई साहब, एंड मोहम्मद शेख भी इस प्रोग्राम को समाज फरमा रहे हैं. या आप हजरात की मोहब्बत है that you are tuned in, and of course you give us the initiative to bring you the best that we can, and hopefully that, you know, we would at all times bring you the best that we can get hold of.
1: You are listening to Guldasta on Lotus FM.
0: I have another new voice on Lotus FM. You've heard him a few times and he's become a firm favorite. Sabki, you know, the everybody loves this artist here. Admira Ishara, Kabul Bukhari ke sahab ki taraf.

0: ये थे काबुल बुखारी साहब, जो जिनकी बड़ी बेहतरीन अंदाज में इस गजल को मरहूम नुसरत फतेह अली खान साहब ने मशहूर किया था, लेकिन इनकी पेश करने की यू नो कुछ और अलग अंदाज है. एंड वेरी ब्यूटिफुली ही प्रेजेंटेड दिस गजल. एंड जाखिरा, यस माई गर्ल, माई सिस्टर एट लीस्ट, ऑफ कोर्स आई नो यू लव दिस आर्टिस्ट काबुल बुखारी. एंड जाखिरा वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट टू आइडेंटिफाई दिस वॉइस ओवर द इयर्स. एंड इन फैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग काबुल बुखारी ऑन देयर, थैंक यू सो मच जाखिरा आउट देयर. मोहम्मद ऑफ रिजर्वायर हिल, शुक्रिया भाई साहब फॉर ट्यूनिंग इन. एंड देन डिकी मैगराज ऑफ क्लिफडेल, हिज एंटायर फैमिली, ही सेज आई वाज लिसनिंग टू द प्रोग्राम एंड आई एंजॉयिंग द प्रोग्राम. एंड हिज रिटन अ फ्यू वर्ड्स इन उर्दू एज वेल. शुक्रिया भाई साहब, मोहब्बत है आप लोग की, दैट यू नो यू वॉन्ट to speak the language as well. Shukran jaza. And Khas, yes, Khas as well is gone all agog listening to the music. Thank you so much, Khas. Like I said, you know, it's so nice when the young ones out there are also listening to the vernacular programs.
1: Hi, South Africa. It's Carol Shabalala, your first lady of sport. If you appreciate world-class sport and a great occasion, the Hollywood Bets Durban July is worth your attention. The theme for 2026 is Country Allure, which sees the rustic style of the countryside meet the cosmopolitan cool of the city. On Saturday, 4 July, it all comes together at Hollywood Bets. It's Gravel, Africa's greatest horse racing and social event. I'll see you there.
2: Hi, this is Pankaj Udas. मेरी ये गजल का शेर है कि आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं. दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुलदस्ता विथ वन एंड ओनली EB महमूद.
0: जी हाँ, आई एम गोइंग टू बी प्लेइंग यू ए गजल संग बाय पंकज उदास साहब, ए वेरी पॉपुलर गजल. एंड लॉट्स ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड दिस, तो आइए, सब आप लोग के लिए है.

दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए. यस, एट्रिब्यूट टू द ग्रेट अताउल्लाह खान हिमसेल्फ. जहाँ तक मेरा सवाल है, जिंदगी ने अगर हमसे वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. जॉइन मी ऑन संडे इवनिंग 9 PM फॉर कवाली आवर. उस वक्त तक जिंदगी को संभाल के रखना, जिंदगी मौत की अमानत है. आई एम गोना बी प्लेइंग आउट विद अ गजल, अ वेरी पॉपुलर गजल, एंड इट्स अ ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन साहब. इस गजल के साथ ही साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. जिंदगी ने अगर हमसे वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. फिया मानिल्ला, खुदा हाफिज़.